0: क्या यार आवाज, बल्ले बल्ले बल्ले, जी कर तो सुनी जाओ यार। जो मिठास है, सुरां जड़ियां लाइया, मुरकियां जड़ियां लाइया यार। साबरकोटी साहब मैं कहना दिल ही जित लिया। 4552 हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हेलो नवी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सत
0: श्री अकाल जी।
1: हाँ जी, मेनू ना फोन चाहिए था, क्रिसमस लाइट कोई लगांदा होवे।
0: क्रिसमस लाइटा, हाँ जी दे देने जी।
1: हाँ जी दसो।
0: क्रिसमस ता दूर है जी, पहला ही याद कर ली क्रिसमस।
1: हाँ जी, वो फिर विंटर टाइम आंदे नी।
0: हाँ नी, वधिया गल है, हुण कर लेना चाहिए काम। नंबर है जी 416।
1: हाँ जी, ओके।
0: 356।
1: 356।
0: 48।
1: 48।
0: 70।
1: 70, ओके, थैंक यू बेटा।
0: कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम। सो जरूर, एंड किसी नु भी कोई इलेक्ट्रिकल काम दी लोड़ है तो 416-356-4870 ते सारे कॉल कर सकते हैं। ग्रोसरी करनी है, फ्रेश फूड सेंटर 12570 कैनेडी रोड, कैनेडी ते डूगल दे कॉर्नर ते, कैनेडी ते मेफिर दे बिल्कुल नाल। फ्रैश फूड सेंटर ते एक बार तुसी जरूर पहुंचना। हार्डवुड जाइंट, थोनू हार्डवुड लैमिनेट वाइनल टाइला कोई भी फ्लोरिंग दा समान चाहिए, हार्डवुड जाइंट टोरब्रम एंड स्टील्स दे कॉर्नर ते। मैं कहना क्या सर्विस है, क्या वरायटी है, तुसी देख के कहोगे आह भी लै लिये, वह भी लै लिये। एक ना सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते तुसी जरूर पहुंचना। सिंपली इंडियन, सिंपली द बेस्ट। सिंपली इंडियन ते जाओ, अपने मनपसंद का खाना पीना खाओ। इन्होंने एक तो जलेबी एक पाउंड नाल एक पाउंड फ्री लाई है, मोहीटोज ते होर बहुत सारे ड्रिंक बाय वन गिट वन फ्री लाए ने। आने वाली दिवाली ते बहुत वड्डे टेंट मिठाइयां 150 तो वध गिव अवेज, लाइव डीजे, पंजाबी लहरा लाइव वन लोकेशन होवेगा। सो जरूर तुसी याद रखो, सिंपली इंडियन 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल, गार्डन ब्रुक कैसलमोर, 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट, मिसागा फाइनेंशियल, एंड 15 फेंडर वे, बवेड एंड शिंक्यूजी। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट थोड़े लिए हाजिर है। प्रदीपा जी भी थोड़े लिए अवेलेबल, जो तुम फ्रिज स्टोव डिशवाशर की कोई रिपेयर करवानी है, कोई अपलायंसिज थोड़े पुराने ने चंगी तरह चल नहीं रहे, अपलायंसिज नूं भज्जन ला देंगे। 647-622-3203, 647-622-3203। एंड पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, नवी रूफ लगन वाली है, रूफ की रिपेयर होने वाली है, पैशन रूफिंग नूं तुसीं फोन करना। गुरलाल भाई जी हुणे फुली इंश्योर्ड कंपनी है, बड़ा खूबसूरत काम करते ने, एंड नाल वारंटी भी थोड़ा मिल रही है। सो पैशन रूफिंग 647-949-9194 नंबर है, 647-919-9413 नंबर है। गाना लाइए दो बोल यार, निर्वैर पन्नू की नवी एल्बम चो।

दयाल तदुखना जानी सतगुर हो दयाल हर रंग मानी अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंग माणते हुए जो छुटे जिखवाते खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतन लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ा लगी मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रॉफ सर।

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादे नाल नहीं काम नाल बनता है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Central, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401, 416-816-8408-84-01।
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकते हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
3: अपना ट्रक वेचन लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
4: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
5: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉट सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
6: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
7: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
1: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਵੇਰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699
8: मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6472-2023-647-702-23।
1: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही ले लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
2: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
3: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू, ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
4: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन।
5: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन दे मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, मुनिसिपल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
4: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
5: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

0: certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स।

0: 1015.
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300 3100
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: आज
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
6: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com होर कोई सेवा
7: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000 Toronto's number one station

0: मिल जाणगियां, बिल्कुल मिल जाणगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो कि टिकटां कदों दीआं चाहीदीआं ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस वी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नां, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 9056781200, 9056781200, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: 32, 55, 80, 98, 80, 52, 80, 82, 90, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंकोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: सुनो जी, भूख लगी आ? पिज़्ज़ा डिपो ले आया 4 नवे देसी फ्लेवर्स। चटपटा अचारी, मक्खन वर्गा मक्खनी, तड़के वाला हाका ते अग लौंदा शेजवान। कोई भी नवा फ्लेवर लो, लार्ज मिलेगा मीडियम दी कीमत ते। कोड वर्तो 9711। लिमिटेड टाइम ओनली, सिर्फ अक्टूबर 30 तक। पिज्जा डिपो, स्वाद नवा, प्यार पुराना।

0: बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तुम भी अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार तुम शो मिस ना करो। सो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर को टोरंटो रोज थिएटर में शाम को 7 बजे।
1: जी बिल्कुल, और टिकटां कुछ अवेलेबल ने हाले भी, अगर तुसी टिकट लेनी चाहुंदे हो रोज थिएटर दी वेबसाइट ते जाके टिकट ले सकदे हो। रोज थिएटर दे विच तुहानूं पता कि बहुत वधिया सिटिंग प्लान हैगा, बहुत वधिया साउंड हुंदा, ते बाकी वडाली साहब अपने पूरे ग्रुप नाल पहुंच रहे ने, उन्हां दा अपना अंदाज है गाउण दा, सुकून वाली गायकी हुंदी है, और तुसी परिवारक शो हुंदा। जे कोई होर इनफॉर्मेशन चाहीदी है ते तुसी सानूं टेलीफोन ते भी पुछ सकदे हो 9057990999 दे उत्ते। सो मनप्रीत जी कुछ होर जांदे जांदे कहना चाहुंदे हो?
2: जी सुखी जी, तुसी घटना दी गल कीती जो बीते दिन ही आलमगीर गुरु घर दे विखे होई, और सब नू पता ही है कि घटना किस तरीके दे नाल जां क्यों कित्थों सारा विवाद शुरू होया कि मजदूरां नू जिहड़ा सी प्रवासी मजदूर सी गुरु घर च लंगर छकन आउंदे ने, उन्हां नू गुरु घर दी रहत मर्यादा दसी जांदी आ कि गुरु घर दी हदूत दे अंदर किवें उठना बैठना, ते ओह उस तों ही नाराज हो के पत्थरबाजी करदे ने। उस तों बाद सुखी जी धार्मिक जथेबंदियां दे विच गुस्से दी लहर दौड़दी है, ते उन्हां ने प्रवासी मजदूरां दीआं जिहड़ियां लागे झुग्गियां सी उन्हां नू खाली करन दे हुकम दित्ते सी। जदों उन्हां ने खाली कीते तां उन्हां झुग्गियां नू उस तों बाद अग लगा दित्ती गई, अगन भेंट कर दित्ता गया। उस तों बाद फिर प्रवासी मजदूरां दा जिहड़ा रोस है उत्थे देखण नू मिलिया आ, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होनी ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज होना ने जिहड़ा इस घटना की निखेधी करदिया होया प्रशासन तों सख्त कार्रवाई की डूंघाई दे नाल छानबीन जांच जां कार्रवाई की मंग कीती आ। सो उम्मीद करदे कि इस कार्रवाई तो बाद घटना रुकण, पर रुकण दा नाम नहीं लैंदियां, किते ना किते आई दिन ही सानूं जिहड़ी आ बेअदबी दी घटना जरूर देखण नूं मिलदी है। धन्नवाद, कल मंडे नूं आपां मिलदे आ नवीं खबरां नाल।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: ओ केड़े जंक्शन ते
5: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
3: रात लगियां महफलां रे
5: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 6474940 40 6474294040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
6: आज
7: रेडियो भी है
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा
9: ना करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
10: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
11: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
10: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
11: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
12: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी,
11: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
12: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
11: 416-509-1509
12: और विजिट insuranceforyou.ca।
13: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
14: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864 905-358-0864।
13: Dhaba on the Falls.